0: आपके खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4". Thirty-six, nothing less, nothing more.
1: लेकिन

0: वाढवायचाय, पण मोठी रक्कम कुठून आणू?
1: विश्वास बँकेचे डेली कलेक्शन व्यवसाय कर्ज घ्या.
0: हप्ता कसा भरायचा?
1: अगदी सोपे. रुपये 1 लाख कर्जासाठी फक्त रुपये 108 रोज.
0: रुपये 5 लाखांपर्यंत असुरक्षित कर्ज, मुदत 3 वर्ष. भाजी विक्रेते, फेरीवाले, छोटे दुकानदार आणि रोजच्या रोकड व्यवहाराचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी खास योजना. अधिक माहितीसाठी जवळच्या
2: शाखेत. न आमद की आहट और न जाने की टोह मिलती है. कब आते हो, कब जाते हो. इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है. इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो. धीरे धीरे आंगन में फिर धूप सिसकती रहती है

बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठ के मुझको देखती रहते हैं, कब आते हो, कब जाते हो, दिन में कितनी बार मुझे तुम याद आते हो।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

0: सितारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाती है। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों सबका। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है कि घाट छोड़ के माझी तमाम जा भी चुके। चलो न चांद की कश्ती में झील पार करें।
1: धंदा आहे, रोजचा कॅश फ्लो आहे, मग घ्या विश्वास बँकेचे अनसिक्युअर्ड बिझनेस लोन व्हाया डेली कलेक्शन। रुपये 5 लाखांपर्यंत कर्ज, मुदत 3 वर्ष आणि रुपये 1 लाखासाठी रोज फक्त 108 रुपये। अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेला अवश्य भेट द्या किंवा कॉल करा 9130002088। रोज थोडं भरा, व्यवसाय मोठा करा। कॉल करा 91300208888।

0: बंदर
1: नहीं,
0: और बंदर घोड़ बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर
1: ना ना ना ना नहीं।
0: ओ तो फिर आज

0: दानी।
1: मैं अकेला रह गया चाचा जी, दीदी चली गई अपने घर, मैं अकेला रह गया।
0: अकेला मैं जो हूं तेरा बेटा, तूने एक सन्यासी को संसारी बना दिया, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा।
1: चाचा जी।
0: बेटा तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तेरे हाथों से देश के बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं।

0: बीत गए बैजू, मैं तो थक गई चलते चलते।
1: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो, मन हारो, धन दौलत हारो, खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो

0: हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाते हैं।
1: बैजू, चरिंदे जागे, परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
0: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो।
2: अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना
0: मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आपने थोड़ा सा।
2: अरे

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

मैं सुधर गई थी कि ना तुम कभी आओगे और न मुझे कभी बुलाओगे, पर तुमने मुझे बुला लिया। तुम मुझे नर्तकी नहीं समझते हो ना, धन्य हो गोपाल, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी नजर से देखा है, समाज की नजरों से नहीं देखा। कितने अच्छे हो तुम, ये चाहता है अपने आप को तुम्हारे चरणों पर निछावर कर दूं। सुना तुमने, हम दोनों की बात गांव भर में फैल गई है, तुम्हें तो मालूम भी नहीं लोग हमारे बारे में कैसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे और तुम्हें

तुमने अपनी आवाज बाली को पार तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस ले ली। हाँ देवी माँ से कुछ और भी मांगती थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ।